सो कर केहा जित बह सर्ब समाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा किते तेरे वावण हारे किते तेरे राग परी स्यों कही है किते तेरे गावण हारे गावन तुदनो पवन पाणी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चेत गोपत लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ न रखी सूर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतन उपाए तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड मंडल।

नसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई ज्यों तिस भावै।

यह दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहेब साचै नाए रहाउ साचे नाम की तिल वडियाई आँख थके कीमत नहीं पाई।

तिस पाछै बचरे शरिया तिन कवण खलावै कवण चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह है सब त्या

हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जान जुग मैं सुखवासी से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया।

नहीं पढ़या मूर्ख मुगधा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा भई

से तज कीनी उत भुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो संकर इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव।

उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण कहता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवै मरे पुरख जवन।

एक पिता एक उसके हम बार तो मेरा गृह सब ना का माँ प्यो आप है आपे सार कृहे पाई ओ वाहेगुरु परमेश्वर कैसा है कोट ब्राह्मण को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे हर जड़े जड़े दे विच ओ वाहेगुरु परमेश्वर आप वस रहा है ओई प्रतपालना कर रहा है साढ़े सौ इनिक सेवा प्रवान कनी हुई पुलना चुका दिखी मकनी आओ अगले प्रोग्राम कथा दे सरवण करिए सिख पंथ दे विद्वान सत्कार योग्य ने गुरु मेल सिंह जी उन्हां पासो चल रहे तंत्र साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी गुरबाणी दी लड़ीवार विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरवण करिए दसारो फतेह प्रवान करो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

जा पढ़ पढ़ पंडित मुनि थके दे संतर भव पथके पेकदारी दूजे पाए नाउ कदे न पायन दुख लागत पारी मूर्ख अंधे तै गुण सेव माया के व्यवहारी अंदर कपट उधर परन कहताई पाठ पढ़े गावारी सतगुर सेवे सो सुख पाए जिन हौमें विचों मारी नानक पढ़ना गुणना यो इक नाव है बूझे को बिचारी सतगुर सेवे सो सुख पाए जिन हौमें विचों मारी नानक पढ़ना गुणना इक नाव है

बोलो जी, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय बार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कह गुरु नानक ले त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास ने हुए सहाय अर्जन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय। जे डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावे ताए सब थाई होए साहे दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए साहे दसा पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। निमाण्या दे मान निताण्या दे तान नियोटियां दी ओट गुरु गरीब निवाज तन तन तन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज आप जी के मुबारक चरणा कमला विच अरदास बेनती है। आप जी के भाणे अंदर चार पहर दिन सुखां दा बतीत होया महाराज जी अमृत वेले तो इस वेले तक आप जिया ने खुले दर्शन दार दे के निहाल कीता है। रात दे दीवाना दी संपूर्णता आप जी की सेवा संभाल सोलह साहब जी की बाणी का जाप होया सेवा करदया बाणी पढ़दया बेअंत फुल्लां हो गई बख्श लेना महाराज जी। बेअंत संगतां आप जी के चरणा दियां हाजरियां भरियां ने महाराज जी सब दी हाजरी कबूल करो खुशियां रहमतां बरकतां नाम नितनेम दियां दातां नाल झोली भर के भेजना महाराज जी। रहण आई है सुखमई शांतमई तुहाडी याद विच बतीत होवे दाता जी। सेवादार हाजर ने अपने सेवकां नूं चढ़दी कला आग्या बख्शिश करो निज स्थान सचखंड पलंग ते विराजमान हो अमृत वेले फिर दर्शन बख्शना सुख होवे नाम चितावे नानक नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

नम है, सतगुर ए नम है, श्री गुरुदेव ए नम है, अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावों, कल कलेश तन माहि मिटावों, सिमरों जास बिसंबर एक है, नाम जपत अगंत अनिक है, भेद प्राण सिमृत सुदाख्यर, कीने राम नाम एक आख्यर।

कै सिमरन दूक जम नसै, प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै, प्रभ कै सिमरन भौ न ब्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै,

निध नौ निध प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा प्रभु कै सिमरन बिन सै दूजा प्रभु कै सिमरन तीरथ इसनानी प्रभु कै सिमरन दर गह मानी प्रभु कै सिमरन हुए सुफला प्रभु कै सिमरन सुफल फला से सिमरह जिने आप सिमराए नानक ता कै लागौ पाए प्रभु का सिमरन सब ते ऊचा प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु कै सिमरन सब किछ सुझै।

कह नानक हर हर अमृत बरकै। भगत जना की बरतन नाम, संत जना कै मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उतरे जनकूट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साध कमात। हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान। मन तन रंग रते रंगे कै, नानक जन कै बिरत बिबेकै। हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत, हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग। हर का नाम जन की वडे आई, हर कै नाम जन शोभा पाई।

रोमान सगल कटाकौ देव दान कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गतमित जानो आपे अपन संगा प्रवराते तुमरी उस्त तुम ते हुए नान कवर न जान सकोए सर्व धर्म मैं श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया सासंग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम है उद्दम भला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मैं अमृत बानी हर को जा सुन रसन बखानी सगल थान ते उत्तम थान नानक जी घट वसै हर ना।

रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिंतु सासुआर सिगारिया गर्भगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरध पया ऊपर साख सहन मुख पया बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श ले हो तो नानक सीजै जे प्रसाद धारु पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संघसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पव कमुला जे प्रसाद भोगै सबरसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करने तरसना तिसे त्यागवर संग्रचना ऐसे दोग मुडंद ब्यापे नान काड लिहो प्रव्यापे आदंत जो रखन हार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नवनिध पावे तास्यो मूडा मन नहीं लावे जो ठाकुर सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दर गै मान तिसे बिसारे मुग्ध अजान सदा सदा भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्द प्रीत पसम संग हुए अंधकूप में पत विकराल नान काड ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मांस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेद अंतर मलमाया छप सुनाही कछ करे छपाया बाहर ज्ञान ध्यान सुनान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे तरह अथाहा जाके अंतर बसै प्रव्याप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गह ले ओढ़ निभावै कहा बुझारत बुझै डोरा निष्कहियै तो समझै पूरा कहा बिशन पद गावै गुंग जतन करै ताओ भी सुर भंग कह पिंगुल पर्वत पर भवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सुहावै न चीत जो बैराई तास्यो प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर्मानै मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह आहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पहे अरदास जीव पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हुए सुआज्ञाकारी तुमरी गात मित तुम ही

नानक कहू न सीजई, बिन नावे पत जाय अष्टपदी। दस वस्तुले पाछे पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै। एक भी न दे दस भी हिरले, तौ मूड़ा कहु कहा करे। जिस ठाकुर स्यों नाहीं चारा, ताको कीजै सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रमीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जने अपना हुक्म नाया, सर्व थोग नानक तिन पाया। अगंत साहु अपनी देरास, खात पीत बरतैन दोलास। अपनी अमान कछ बहुर साहु ले, अज्ञानी मन रूस करे। अपनी परती ताप ही खोवै, बहुर उसका विश्वास न होवै। जिसकी वस्तु से आज्ञा रखे, प्रभु की आज्ञा मन मथ है। उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनिक भांत माया के हेत, सर पर होत जान अनेत। बिर की छाया स्यों रंग लावे, ओ बिन सह मन पछतावे। जो दिसै सो चालन हार, लपटे होते अंध अंधार। बटाऊ स्यों जो लावे नेह, ताको हाथ नया वैके। मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राज जोवन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अस्तु वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। मिथ्या ध्रुव मुह अभिमान, मिथ्या पशु पर कर्त गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिर है। मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार कौताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब भये, सफल देह नानक हर हर नाम ले। बिरती साकत की आरजा, साच बिना कहूत सूचा। बिरता नाम बिना तन अंध, मुकावता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बृता बिहाये, मेघ बिना ज्यो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बृते सब काम, ज्यो कृपण के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जे कट बस्यो, हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर कछवर कमावत, मनि प्रीत मुखो गंडलावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख न काऊ पीन। अवर उपदेश आप न करै, आवत जावत जन मै मरै। जिसकै अंतर बसै निरंकार, जिसकी सीख तरै संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उनजन चरण पराता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप मानै। आप है आप आप करत नबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव सियान सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत। जिस पावै तिस लै लड़ लाए, थान थनंतर रहा समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहंग मेव। नानक प्रभु शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। ये प्रसाद छत्ति अमृत खाहे, तिस ठाकुर कौ रख मन माहे। ये प्रसाद सुगंध तन लावै, तिसको सिमरत परम गत पावै। ये प्रसाद वसै सुख मंदर, तिसै त्याय सदा मने अंदर। ये प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना। ये प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय त्यावन जोग। ये प्रसाद पाठ पटंबर हंडावह, तिसै त्या कतवर लुभावह। जे प्रसाद सुख से सोई जय, मन आठ पहरता का जस गावी जय। जे प्रसाद तु सब को मान, मुक्ता को जस रसन बखान। जे प्रसाद तिरु रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जप दर गह मान पावह, नानक पत चेती कर जावह। जे प्रसाद आरो कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। ये प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभता कह। जे प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे। ये प्रसाद पाए दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद आ भूखन पहरी जय,
मंति सिमरत क्यों आलस की जय। जय प्रसाद अश्व हस्त सुवारी मंति प्रभ को कबू न बिसारी। जय प्रसाद बाघ मुलक तना राख प्रोय प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बणत बनाई उठत बैठत सत सहत आई तिसहत आई जो एक अलख है। इहां उहां नानक तेरी रखै। जय प्रसाद करै पुन बहुदान मनाठ।

मन मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साथ रे मन मेरे तू ता स्योरा जे प्रसाद सब की गत हुए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मातु उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी माया पू कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक किन कह कछु न हाथ श्लोक अगम अगात पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साजना की चर्च कथा अष्टपदी साधक संग खूजल होत साध संग मल सगली खोत साधक संग बटै अभिमान साधक संग प्रगटै सुज्ञान साधक संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधक महिमा वरनै कौन प्राणी नानक साधक शोभा ब्रह्मा सुमानी साधक संग गुचर मिले साधक संग सदा प्रफुल्लै साधक संग आवै बस पंचा सा संग अमृत रस पुंचा सा संग होए सब कीरे साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतु तावै सा संग स्थित मन पावै साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महा पुनीत साध संग किस्यो नहीं बैरु साधक संग न भीगा पैरु साधक संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही होता पू साधक संग तजै सव्याप आपे जाने साध बढ़ाई नान साध प्रभु बने आई साधक संग न कब हुतावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस्त गोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साधक संग बसै थान उच्चै साधु कै संग महल पहुँचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उधार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु कै संग सो धन पावै जिस तन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्व थान गम नानक साधक संग सफल जन्म साधक संग नहीं कछ काल दर्शन भेट तोहत निहाल साधक संग कलुकत हरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग इहां उहां सुहेला साध संग बिचुरत हर मेला जो इच्छै सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साधक संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाओ साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साधक संग लगै ब्रह्मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जानै जेता सुनै तेता बखियानै साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते उच्ची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख कस बिन कोए नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौ शोक ब्रह्म ज्ञानी कै दृढ़ समान जैसे राज रंग कौ लागै तुलपवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यों वसुदा को खुदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पावक का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगास जैसे तारु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी उच्च ते उच्चा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म

0: ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी कह ना ही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभसंग ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माही ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाख्यर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी कंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी साध जीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उर धारै जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार है नानक अपर सगल निस्तार है अष्टपदी। मिथ्या ना ही रस न परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रै रूप न पेख नेत्र साध के चार संसंग हेत कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा। गुरु प्रसाद विख्या पर हरे मन की वासना मन ते टर इंद्री चित पंच दोख ते रहत नान कोट मध्य को ऐसा परस। वैष्णो सोजी सुपर सुप्रसन्न विष्णु की माया ते हुए भिन्न कर्म करत हु वह नि कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहु बल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्रह चय मन तने अंतर सिमरन गोपाल। सब ऊपर होवत कृपाल आप जड़ै अवरह नाम जपावै नानक वैष्णो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत। मन तन अर्पय विष्णु प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है राम नाम आत्म है शुद्ध है राम नाम सारस पीवै उस पंडित के उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै। सो पंडित फिर जो नाया वै वेद प्राण सिमरत बूझै मूल सुखम मैं जानै स्थूल चौं वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चो वर्णा में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत हुए सा सुन पावै जिन कोई। कर कृपा अंतर उर धारै पस प्रेत मूत पात्र को तारै सर्व लोक का खुद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम। काहु जुगत कि तै न पाई है धर्म नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास। तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन भाई तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गै परवान अपने दास को आ कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे। सगल संग आत्म दास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै। जीवन मुख सोग कहावै तैसा अर्क तैसा सोग सदा नंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा मृत तैसी बिकाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरताय साई जुगत। नानक उपुर कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सबल कले ठाउ जित जित कर राख तैसा तिन नाउ। आपे करन करावन जोग प्रभाव सोई पुन होग पसर आप अंत तरंग लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग। जैसी मादि तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल। सिमर सिमर नानक भय निहाल श्लोक उस्तुत करे अनेक जन अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रचि भव विदनक प्रकार स्पदी कई कोट हुए पूजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपिसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कवका विचार है कई कोट नवतन नाम त्यावै नानक करते कंत न पावै कई कोट पै अभिमानी कई कोट अंधा ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपे गातम निकोर कई कोट पर दर्व को ही रह कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाहे कई कोट परदेश परमाहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पात्र वृक्ष निपजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखियत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूतार है नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस्ताम सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्शास्त्र कई कोट कीर्तन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वरण थीवे कई कोट जग किन्नर पिशाच कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगास सबते निरह सबूते दूर नानका बलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरसुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव मरै कई कोट बोजूनी फिरै कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट पालै थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब किछ प्रभ कै हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संगतिन लिव लागी कई कोट प्रभ को जनते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिन को मिलो प्रभ विनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खानी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतार कई जुगत किन्नो विस्तार कई बार पसर पासार सदा सदय के कंकार कई कोट किन्ने बहुपात प्रभ ते हुए ब्रह्मा हि समाता कंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन हुवता तुम प्रगास कई कोट तत् के बेटी सुदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर पै सद ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्मरा सुख सह सुमावे अपने जन का सुख साथ साथ सुमारे अपने जन कौ सा सा सुमारी नानक कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहार न जल तन मही अल सो इष्ट पदी करण करावन करने जोग जो तिस भाव है सोई होग खिन महताप थापन हार अंत नहीं किछ पार अवारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म सुमावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक समय रहा सुमाई प्रभावै मानु गत पावै प्रभावै ता पात्र त्रावै प्रभावै बिन सास तेरा कै प्रभावै ता हर गुण पाकै प्रभावै ता पथ सुधारै आप करै अपन विचारै दुआ सिरै काप स्वामी खेलै विकसै अंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानुक ते क्या हुए आवै जो तिस पावै सोई करावै इसके हाथ हुए तां सब किछ ले जो तिस पावै सोई करे अनजान बिख्या मैं रचै जे जानता अपना बचै परमे भुला दै दिस्तावै निमक माचार कुंठ फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन ना मिले खिन मैं नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब नवाज आका दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै जा को अपनी करै बख्शीस ताका लिखा न गने जगदी जीव पिंड सब तिस की रास कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जी वैदिक बुलाई इसका बना ही सहात करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस भावै सोई पंथियो कबू ऊच नीच मैं बसै कबू सोग हर करंग हसै कबू निंद चिंद व्यवहार कबू बकाश बयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानका मिलावनहार कबहू नृत्य करै बहुपात कबू सोए रह दिन रात कबू माँ क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू होए वह बड़ राजा कबू पेकारी नीच का साजा कबू अब कीर्त में आवै कबू भला भला कहावै ज्यो प्रभ राखै तिवही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कबहू होए पंडित करे बख्यान कबू नून धारी लावै ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिर साधिक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया निक जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभावे तिवै नचावे जो तिस पावे सोई हुए नानक दूजा वर न कोय कबू सा संगत पावे उस स्थान ते बाहर न आवे अंतरो ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रते करंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यो जल में जल आए कटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सद कुर्बान श्लोक सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपति जिसके अंतराज महान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्ठा का जंत आपसको करवंत कहावै जन मरै वो जोन परमावै धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानकी हम मुक्ता कै सुख पावै धनवंता हुए क्या धनवंता हुए कर गर्भावै तिन समान कर संग न जावै बोल उसकर्मा अनुकूपर करयास फल पीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन में हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तुझ करे कुवारी गुरु प्रसाद जाका मिटै बिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करया हो तारी श्रम पावे सगले बिरतारे अनिक तपस्या करे अहंकार नर सुर फिर अवतार अनिक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दर गह को कैसे गवै आपस को जो भला कहा वै तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेंजा का मन होए कहो नानकता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोय जावे जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तार है को बैरी मी तब लग नीचे ना ही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटै गुरु प्रसाद नानक हो छूटै सहस कटीला कोटा तावै तृप्त न आवै माया पाचे पावे अनिक भोग बिकिया की करे न तृप्तावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं पूरा जय सुपन मनोरथ बिरथे सुभ का जय नाम रंग सर्व सुख हुए बिटभागी किसै प्राप्त हुए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक कर जाप करण करावन करण हार इसके हाथ का विचार जैसी दिष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किछ कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सबु कै संग बूझै देखै करै विवेक अपहि कपहि अनेक मरै न बिनसै आवै न जाए नान सद ही रहया समाय अपबुद्धि सै समझै आप अपि रचिया सब कै साथ आप किनु वापन विस्तार सब कछु उसकाउ करने हार उसते भिन्न कहो किछ होए थान तनंतर एकै सोए अपने चलत आप करने हार कौत करै रंग आपार मन मैं मन अपने माहि नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने विज्ञानी सच सच सत सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप असुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट चुनी श्रवण बख्यानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत शरण जो जन परै सो जन उतरण हार संत की निंदा नानका बार बार अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जम ते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा तेहीन संत के हथे को रखै न कोय संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए संत कै दुखन त्रिगत ज्यों किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब कुछ लै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी काथा को नाहि नानक संत पावै तां होइ भीगत बाहि संत का निंदक मात ताई संत का निंदक किंटिक न पाई संत का निंदक माह त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत की निंदक को सर्व रोग संत की निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मैं दुख नान संत पावे तो उसका पी हुए मुख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का निमित्त संत के दुखी कौ डान लाग गए संत के दुखी कौ सब त्याग गए संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जिन में मरै संत की दुख ना सुख ते टरै संत के दुखी कौ ना ही ठाओ नानक संत पावै तां ले मिलाई संत का दुखी अदबीज ते टूटै संत का दुखी कितै काज न पहुंचै संत के दुखी को ध्यान परमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर तेत होता, जो सास बिना मृतक की लोता। संत के दुखी की जड़ किछ नाही, अपन भी जापे ही खाही। संत के दुखी कवर न राखन हार, नानक संत पावे तां लैयो बहार। संत का दुखियां बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पाव केंद्र नहीं त्रापै। संत का दुखी छुट्टै केला, ज्यों बुआड़ तिलखीत माही दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमिथिया कैत। किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्योति स्वभाव है सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरे न जीवाई है। संत के दुखी की पूजे न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत का दुख न त्रिष्ट कोय, जैसा पावे तैसा कोई होय। पै किरत न मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोय। सब घट तिसक्यो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, सहत्याहु सास ग्रास। सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथी। अपना के लाभ करने हार, दूसर कौन कह विचार। जिसनु कृपा करे तिसा नाम दे बड़ भागी। नानक जन से श्लोक तजो सियान, सुरजन हो सिमरो हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पो जाए। पदी मानु की टेक वृत्ति, सब जान देवन को एक है भगवान। जिसका दिया रह घाय, बौर न तृष्णा लग गया। मार रखे कुआ, मानु कह किछ नाही हा। तिसका हुकुम सुगो, तिसका नाम रखंड पुरोय। सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए, नानक बिघन न लागे कोय। उस्त मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो। नैनो पेक ठाकुर का रंग, सा संग बिन सब संग। चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिय हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक जल मत्था। बिट भागी तेजन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचारो, सेतन मंत गनि संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछाने, तुत कियो सो जी जाने। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपने आप सुजै, तिसकी जानू तृष्णा बुझै। सात संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत। वंदिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिचन की आशा, तिसकी कट्टी अजम की पासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख। जिसको हर ब्रह्मन चितिया वह, सो संत सुहेला नहीं डुलावै। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किस ते डरै। जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप सुमाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाता सब बुझिया। जब देखो तब सब किस मूल, नानक सो सुकम सो ये सूल। न के जन्मै न किस मरे, अपन चलताप ही करे। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट। आपे आप सगल मैं आप, अनिक जुगत रचताप उथाप। अवनाशी नाही किछ खंड, धारण धारे हो ब्रह्मांड। अल कपे पुरख प्रताप, अब जपाए ता नानक जाप। जिन प्रभु जाता सो सो बावंत, सगल संसार उदरै तिनमंत। प्रभु के सेवक सगल उदाहरण, प्रभु के सेवक दुख विसारण। आपे मेले कृपाल, गुरु का सब जपै निहाल। उनकी सेवा सोई लागै, जिष्णु कृपा करह बिट भागै। नाम जपत पावै विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किछ करै सो प्रभु कै रंग, सदा सदा बसै हर संग। सह सुभाए होवै सो होए, करनै हर पछानै सोए। प्रभु का किया जन मीट लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस माए समाए, सुख निदान उन्हों बने आए। आपस को आप तीनो मानो, नानक प्रभु जन एको जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु, बिरथा जानन हार। जाके सिमरन उदरी है, नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल, सर्व जी आया पे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभु आपे आप। अपन किया कछु ना होए, जिस प्राणी लोचै कोय। तिस बिना ही थेरै किछ काम, गत नानक जपे कर नाम। रूपवंतो ना ही मोह है, प्रभु की जो सगल कट सो है। धनवंता होए क्या को गर्वै, जा सब किस तिसका दिया दरबै। असुरा जे को कहा वै, प्रभु की कला बिना कहता वै। जे को हुए बह दाता, तिस दिन हार जाने का वाह। जिस गुर प्रसाद उठै हो रोग, नानक सो जन सदा रोग। जो मंदिर को थम है थम, त्यों गुरु का सद मन अस्थमन। जो पाखा नाव चढ़ तर प्राणी गुरु चरण लगत निष्ठर जो अंधकार दीपक प्रगास गुरुदस संदेह मन होय विगास जो माव ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बांचो तूहूर नानक की हर लोचापूर मन मूर्ख का हे बिल लाई है पूर्व लिखे का लिखिया भाई है दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिस चितार जो कछ कर सोई सुख मान भूला काहे फिरे जान कौन बसताई तेरे संग लपटरे रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पद सिद्धी कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताजब मान लिहो मन भूल राम नाम हृदय में तूल लाद के संत संचाल अवर त्याग किया जंजाल तन तन कह सब कोए मुख उजल हर दर गै सोए हो व्यापार विरला व्यापार है नानक ताके सत बलिहार है चरण साध के तुय तुय पियो अर्प साध को अपना जियो साध की धूर कर हो स्नान साध ऊपर जाइये कुर्बान साध सेवा वट भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई अनक बिघन ते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे ओट गही संत दर आया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवालन हार भूखे को देवता धार सर्व निदान जा की दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाए सब किस जिसका करने जोग तिस बिंदु सर हुआ न हो जप जन सदा सदा दिन रहनी सब त्योच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रति तिस जने आवे हर प्रवचित भगत पग सुनिया त्यो लोए जाके हृदय को हुए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सतमुख कैत साची दृ सचा आकार सच वर्त सचा पासार पार ब्रंजन सच कर जाता नानक सोजन सत समाता श्लोक रूप न रेख न रंग किच त्रैगुण ते प्रभ भिन्न तिस हे बुझाए नानका जिस हो वै सुप्रसन्न अष्टपदी अवनाशी प्रमन मै राख मानुक की तु प्री त्याग तिसते पर नाही किच कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे ताना गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साथ तेरे की चरणी पाऊ नानक मन हो अनराव मन सा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरण भरण जाका नेत्र पूर तिसका मंत्र न जाने हो रण द्रु मंगल सजा कै सर्व थोक सुनिए कर ताके राज में राज जोग में जोगी तप में तपीश्वर ग्रिष्ट में भोगी त्याई त्याई भगत है सुख पाया नानक तिस पुर का किनंत न पाया जाकी लीला कीमत नाही सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जन दास नाम त्या वैसे त्यो गुण में जाको परमाए जन्म मरे फिरिया वह जाय ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भे कर एक रंग नाना विद किन्नो विस्तार प्रभ बनासी एक अंकार नाना चलत करे किनवाए पूरे अपूर्ण सब ठाए नाना विद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ जप जप जीव है नानक हर नाऊ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया स्वभवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जा के असत स्थान पुरुख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरुख समाय समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरु ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर दे प्रवेश सत निरत बुझे जे कोए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सो करने हार वरण बुझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योति सुभाव है सो वरतिया विस्मन विषम भय विषमा जिन बूझा तिसाया स्वाद प्रभ कै रंग राजन रहे प्रभ कै रंग राजन रहे गुर कै वचन पदार्थ लहे जाते दुख कट न हार जाते संग तरह संसार जन का सेव सो वट भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोका सच उगा सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेख नहारु, नाम सत सत्यावन हारु, आप सत सत सबतारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभुक्ता, सुरत सत सत जसुनता, बुजन हार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करन करावन तिन मूल पछानिया, जा कह हृदय विश्वास प्रभे आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, भय ते निरभउ होए बसाना, जिस ते उपजिया तिस माहि समाना, बस माहिले बस गडाई, ताको भिन्न कह न जाई, बूझे बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक का मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जन संग, प्रभु का सेवक नाम कै रंग, सेवक को प्रपालन हारा, सेवक की राख निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभु धारै, नानक सो सेवक सास सास सुमारै, अपने जन का पर्दा ढाकै, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को देव बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गत मित कोई न लाखे, प्रभु के सेवक कौ को न पहुंचे, प्रभु के सेवक कूचते उचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया, नीकी कीरी में कल रखे, भस्म करे लश्कर कोट लाखे, जिसका सास न काटता पोता को रख दिक्र हाथ, मानस जतन करत बपात, तिसके करत बिरथे जात, मारण राखै वरना कोय, सर्व जिया का रखा सोए, काहि सोच करै रे प्राणी, जप नानक प्रबल कविडानी, बारं बार बार प्रभु जपिए, पिय मृत्यु मन तंत्र पिए, नाम रतंजिन गुरुमुख पाया, तिसके चवर नाही दष्टाया, नाम ता नामु रूप रंग, नामु सुखर नाम का संग, नाम रजो जन तृपताने, मंत्र नाम में नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सुध काम, बोलो जस जीवा दिन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करै भगता तुम कह चाहे, प्रभ अपने स्यों रहै समाये, जो हुआ हुआ सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पछाने, तिसकी महिमा कौन बुकानू, तिसका गुण कैक ना जानू, आठ पैर प्रभु सह हजूरे, कहो नानक से जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट लेहे, मन तने अपना तिन जन देहे, जिन जने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोका दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिस कै दर सब पाप मिटावे, गुर सियान सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान न हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा,
1: सतगुरु तिस का नाम, तिसकी संग सिख उदरे, नानक हर गुण गावट बली, सतगुर सिख की करे प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिख की गुर गुरमत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उचरे, सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बेकार ते हाटे, सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख बड़ भागी, सतगुर सिख का हलत पलत सवारे, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे, गुर के ग्रह सेव कुजू रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कठ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे, मन बेचै सतगुर के पास, ते सेवक के काज रास, सेवा कर होए ने कमी, जिसको होत प्रभ स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नान सो सेवक गुर की मत भी, बीस बिसवे गुर का मन माने, सो सेव परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुरु हृदय हर नाओ, अल्प बार गुर को बल जाओ, सरबंधान जी का दाता, आठ पैर पार ढूंढ रहता, ब्रह्म जन जन्मे पार ब्रह्मो, एक के आप नहीं के परम सहस्य अण लैन जाइए नान कैसा गुर बड़भागी पाई सफल दर्शन पेखत पनीत पर सचरण गंधर मरीत पीठ संग राम गुरु रवे पार ब्रह्म की दर्ग गवे सुन कर बचन कर्ण अघरने मन संतोख आत्मपत्याने पूरा गुरु आख्यो जा का मंत्र अमृत एक संत गुण बेअंत इत नहीं पाए नान जिस पावे ते लय मिलाए जेबा एक उत अनेक सतपुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पवित प्राणी अगम्य गोचर प्रभु निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत इन्हें न पाई अनक भगत बंध नित करे चरण कमल हृदय सिमरे सद बलिहारी सदगुरु अपने नान जिस प्रसाद ऐ सबरज अपने इवरस पावे जन तुए अमृत पीवे अमर सोए ओस पुर का ना ही करे विनाश जाके मन पलटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच दे शिव को दे वो माया के संग लेप मन में राखे हर हरेक अंधकार दी प्रकाशे नान परम दुख चैतना से तौत मैं ठंड वरताई अंध पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंधे से साधु के पूर्ण से पौ चूका निरपोहे बसे सगल ब्याज मानते खैन से जिसका सातन कृपा तारी सा संग जप नाम राय थित पाई चूके परम गमन सुन नानक अरज सुन निर्गुण आप सरगुण पियो कला तार दिन सगली मोई अपने चरित प्रा बनाए अपने कीमत आपे पाए हर बिन दूजा ना ही कोई सर्व निरंतर एको सोई ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध के संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखया सगले शार हर हर नाम कमावना नान क्यों तनसार अष्टपदी संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर पाप स्वामीत बसारो चरण कवण प्रिज में उतारो कर्ण कारण सो प्रस्मृत दृढ़ कर गौ नाम रवत ए तन संचो ओ भगवंत संजना का निर्मल मंत्र एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुंठतावे सो तन हर सेवा ते पावे जे सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जे सोभा को करे पढ़ी करने सा सोभा पज हर की सरने अनको पावे रोग न जाए और रोग मिटे हरव कर लाए सर्वनिधान में हर नाम निधान जप नानक धर के प्रमाण मन पर बोध हर कह नाए दे दिस्ताव आविठाए ताको बिघन अलागे कोए जा कर बसे सोए काल साती ठांडा नाओ सिमर सिमर सस पाओ ओ बिन से पूर्ण यासु भगत पाए आत्मृगास तित कर जाए बसे अबनासी कौ नान काटी जम्पासी तात विचार कहे जन साचा जन मरे सो काचो काचा आवागमन मिटे प्रभु सेव आप त्याग सन गुरुदेव यो रतन जन्म का हुए उदार हर सिमर प्राण उदार अनक पाव न छूटन हारे सिमर सास वीर विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बचत नानक पल पाए सांगन चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत टमर बनता इनते कहो तुम कौन सुनाता राज रंग माया विस्तार इनते कहो कौन छुटकार आसक्ति रथ सवारी झूठा डम झूठ पासारी जिन दिए जिस बुझे न बिगड़ना नाम विसार नानक पितरना गुर की मातू ले आने भगत बनावो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल हुए तुम्हार उचित चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाए आप जपो अवरा नाम जपाओ संत कहे प्रेत कर पाओ सारपूत सतर को नाओ सहज सपाई नान गुण गाओ गुण गावत त्रिउतर समैल बिलस जाए होमे में पैर ओहे अचिंत बसे सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल शाड सियान सगली मना सास पावे सतना हर पूंजी सच करो व्यवहार ई हा सुख दर्गे जयकार सर्व निरंतर एको देख कौ नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सलाए एक सिमर एको मनाए एकस के गुण गौ अनंत मंत्र जाप एक पवन एको एक एक अर्याप पूर्ण पूर्ण प्रव्याप अनक विस्तार एक ती पहे एक रा प्राप्त गए मंत्र अंतर एक प्रवरता गुर प्रसाद नानक एक जाता स्लो फिर तो प्रभ आया परया तो सरनाई
0: नानक
1: की प्रभु बेनती अपनी भक्ति ला
0: जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम

राम नाम अंतर उरतार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे तिस साच परिखिया, मंत्र नाम जपो लिव लाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए, सच व्यापार करो व्यापारी, दर गहन बह खेप तुम्हारी, एका टेक रखो मन माहे, नानक बहुर नया वह जाहे, तिस्ते दूर कहा को जाए, उबरे रख नहार ते आहे, निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टै, जिस प्रभ राखै तिस नाहि दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाय मिटै अहंकार, तिस जन को कोय न पहुँचन हार, सिर उपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा, मत पूरी अमृत जाके दृष्ट, दर्शन पेखत कुदरत सृष्ट, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, धन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सुहूत निहाल, ताकै निकट न आवत काल, अमर भय अमरा पद पाया, सा संग नानक हर त्याया, सलोक ज्ञान

सुअस्तपदी संत सांगंत्र प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्कट माही अनिक रंग नाना दृष्टाही नव निदमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत नाथ कह न जाये चर्ज विस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत काट काट व्याप रहा भगवंत तरण माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंट दह दिशे समाहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत मैं देख सस्यर सूर नक्षत्र मैं एक वाणी प्रभ की सबको बोले आप डोल न कब हूं डोले सर्व कला कर खेल खेल बोल न पाइये गुने अमूल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार रहो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन में इहो विसास संत जना का पिखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुने सुबचन सर्वव्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी यह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत

आज्ञाकारी कीनी माया। सब कह मद लिपतो रह, जो कुछ कहना सो आपे कह। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावै ता ले समाए। स्ते हुए सुना ही बुरा, और कहो किने कछ करा। भला कर तू तत्नी की, आपे जाने अपने जी की। आप साच धारी सब साच, उतपोत अपन संगराज। ताकि गत मित कही न जाए, दूसर हुए ता सोजी पाए। तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक हो जान। जो जाने तिसदा सुख हुए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुख जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस परसा सब जगत राया। जन आवन काय है सो आओ, जन कैसं चित आवै नाओ। आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाऊ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। सा सा सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस नित्या गोहत रंग, संत जना की तूर मन मांग। आप छोड़ बेनती करहो, सा संग गुण सागर तरहो। हर तन के पर लेहो पंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, सासंग भज परमानंद। नरक निवार उदारो जीव, गुण गोविंद अमृत रस पियो। चित चित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक। गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। उत्तम श्लोक साध के वचन, अमलीक लाल रतन। सुनत कमावत होत उतार, आप तरह लोक कै निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जा कै मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन अनंत करे प्रभ गाजै। प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक कुदरे तिन कै साथे। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभाप मिलाए। मिट गए बैर भय सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन। सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण हुए सेवक की सेव। आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभतारी, नानक निभ ही खेप हमारी। प्रभ के उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सोहोत निदान। सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते उच पाए स्थान, बौर न होवे आवन जान। हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगा, सब कहमत सगल ते उदास। सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता। एह फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने। एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग मै ताकि गत होए। गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमृत शास्त्र वेद बकाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपरा सा संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुट्टै। जाके मस्त कर्म प्रपाए, सा शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुने लाए परीत, तिस जन आवै हर प्रवचीत। जन्म मरणता का दुख निवारै, दुर्लभ दे तत्काल उधारै। निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माही समानी।

एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भूख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपा लख होहे ता एक न चलै नाल केव सचियारा होई है केव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईऐ है इक ना हुक्मी बख्शीस इक हुक्मी सदा पवाईऐ है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हुमै कहै ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाणै निसाण गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेहे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे प्रवाहो साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आखै है मंगै है देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखियै जित दिसै दरबार मोहौ के बोलन बोलियै जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख दुआर नानक एवै जानियै सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावियै गुणी निधान गावियै सुनियै मन रखियै पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौं जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विण पाणे के नाए करी जे ती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कार दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सूझई जे तिस गुण कोए करे सुणा सिद्ध पीर सुरनाथ सुणा धरत धवल आकाश सुणा दीप लो पाताल सुणा पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुणा दुख पाप का नास सुना है ईसर ब्रह्मा इंद सुना है मुख साला हनुमंद सुना है जोग जुगत तन भेद सुना है शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है सात संतोख ज्ञान सुना है आठ साठ का इसनान सुना है पढ़ पढ़ पावै मान सुना है लागै सहज ध्यान नानक भगतां सदा विगास सुनाए दुख पाप का नाश
सुनाए सरा गुणा के गाह सुनाए सेख पीर पात साह सुनाए अंधे पावै राह सुनाए हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनाए दुख पाप का नास मन्ने की गत कही न जाए जे को कहे पिछे पछुताए कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मान कोए मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध मन्ने सकल भवन की सुध मन्ने मोहे चोटा ना खाए मन्ने जम कह साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ स्यों प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने पावह मुख द्वार मन्ने परवारै साधार मन्ने तरै तारी गुर सिख मन्ने नानक पवह न भिखो ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान पंचै सोहै दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जे को कह करै विचार करते कह करणै नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार तबलै उपर किता पार धरती होर पर होर होर तिसते पार तलै कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया वुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाणै कोए लेखा लिखिया किता होए किता तान सुआले हो रूप केती दात जाणै कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिसते होए लख दरियाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन राहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लेव लाए तार कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख पुकाए असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख काहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुणगाह अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ कुदरत कवण कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार भरिए हाथ पैर तन देहे पाणी धोतै उतर सोखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइए ओ धोए भरिए मत पापा कै संग ओ धोपै नावै कै रंग पुनी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहो जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिलका मान सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए वैण गुण कीते भगत ना होए
सो अस्त आत बाणी ब्रह्माओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवण सो वेला वखत कवण कवण थित कवण वार कवण से रुपी माह कवण जित होआ आकार वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वखत न पायो का दिया जे लिखन लेख पुराण थित वार न जोगी जाने रुत माह न कोई जा करता सरठी कौ साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव साला ही क्यों वरने केव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड़ा साहिब वड़ी नाई कीता जाका होवै नानक जे को आपौ जाने अगै गया ना सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक बात सहस अठारह कहन कतेबा असुलु एक तात लेखा होए ता लिखी है लिखै होए विनाश नानक वड़ा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाहे एती सुरत न पाइया नदियां अतै वाह पवै समुंद न जानिए है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मन होना भी सुरा है अंत न सिखती कहण न अंत अंत न करणै देण न अंत अंत न वेखण सुणन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाउ ऊंचे उपर ऊंचा नाउ एवड ऊंचा होवै कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड़ा दाता तिल ना तमाए किते मंग है जोद अपार किते अगणत नहीं विचार किते खप तुटै वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केते दुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाणै होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाणै जेतिया मोहे खाए आपे जाणै आपे दे आखह से पे केई के जिसनु बख से सिफत सला नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवै है अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबाण अमुल तुल अमुल परवान अमुल बखशीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आखिया न जाए आख आख रहे लिवलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्याण आख है ब्रह्मे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईसर आख है सिद आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नार मुन जन सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करे हे ता आख न सक है केई के जेवड़ पावै तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आखै बोल विगाड़ ता लिखिए सिर गावार गावार सो दर के हा सो कर के हा चित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे केते राग परि स्यों कहियन केते गावण हारे गावै तुहनो पाउण पाणी बै संत्र गावै राजा धर्म दुआरे गावह चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नर कीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुर गाव मश पयाले गावन रतन उपाए तेरे अठ साठ तीर्थ नाले गावै जोद महाबल सूरा गावै खाणी चारे
गावै खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तारे से ही तुद नो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा साचो साहिब साचा साची नारी है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जीव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म ना करना जाई सो पात साहौ साहा पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की कर है बेपूत खिंथा काल कुआरी पाया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सद जाकी रिद सिद अवरा साद संजोग विजोग दोए कार चला वह लिखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओ वेखै उना नदर ना आवै बहुता एहो विडाण आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया।

आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी संत साजन।

श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होवो जी सहाय। दसाही पातशाहियां दी जागदी जोत बाणी के बोहेथ। चावर ताकत शत्र दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ। दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां ने तेरा नाम जपिया। वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देके अणडिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारें दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां। चरखड़ियां ते चढ़े तन आरियां नाल चिराए गुरुद्वारें दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक केसा सवासा संग निभाया। तिना सिंघां सिंघणियां पुचंगी बच्चियां दी नाम दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चित आवै जी। नाम चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां गुरु खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत।

निध दुख ना सकै व्यापो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत वेले धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया की पावन हजूरी दे विच हाजरियां भर रही गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी सारे ही धनता दे योग हो जो अमृत वेले सतगुरु जी दियां हाजरियां भरियां तन मन धन दे नाल सेवा कमाई है। सतगुरु जी सभना दियां आसां मुरादां पूरियां करदे होए अपने पावन चरण कमलों के नाल इसे तरह सतगुरु जी जोड़ के रख लैण तां जो मनुखा दे ही सफल हो सके। हुण समा होया है रोजाना दे नियम अनुसार श्री आसा जी दी वार दे कीर्तन प्रारंभ होणगे। गुरु घर दे हजूरी रागी भाई साहिब भाई सतनाम सिंह जी दा हजूरी कीर्तनी जथा आप जिया आसा जी की वार दे कीर्तन सरवण करवाउणगे। आप जिया ने कृपालता सहित गुरु की बाणी दे कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त करने जी। वाहिगुरु जी का खालसा।

0: भाग्य तिसे रजाए सुध।
1: गुरु प्यारी साध सिंह जी आओ हम समा हो रहे अज के मुख वाक के विचार का सत्कार योग गुरमेल सिंह जी कनेडा वाले आप जी अज के हुक्मनामे की कथा सरवण करवाउंगे जी। प्यार सहित सरवण करो दस रहा पासों हुई भुलां की खिमा बख्शते हुए फतेह की सांझ पाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
2: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता, हौ मैं मार मनसा मन है समाणी, गुर कै शब्द पछाता, अचिंत काम करह।

बिन सतगुरु सेवे किने न पाया, मन मुख भौंक मुए बिल लाई, आवह जावह ठौर न पावह, दुख में

अनेक कर्म करे अधकाई। वेद पढ़ै ते वाद बखान है बिन हर पत गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी भज छूट है गुर सरनाई। जिन

लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे निमक एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। सत्कारयोग साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी विच सज बैठी गुरु रूप साध संगत जी, आप वडभागी हो जो इस खुशियां दे मौके सतगुरां दी हजूरी विच संगति रूप विच जुड़ बैठे हो। सो सब तो पहला तां सारी संगत नूं जी आया बेनती है कि आप जिया ने सतगुरां दी हजूरी विच बैठण दी मर्यादा नूं ध्यान विच रखना है, चौंकड़ी मार के बड़े अदब दे नाल गुरु साहिब दी हजूरी विच बैठना है ते सारिया ने अपने सिर ढक के रखने हन सतगुरां दे सत्कार दे अंदर। यह बेनतियां प्रवान करनियां। आप जी अज सुभाग जोड़ी काका श्याम गाला, सपुत्र श्री भरत गाला अते बीबी मालती गाला, बच्ची जसदीप कौर मानक, सपुत्री सरदार रणबीर सिंह मानक अते बीबी मनप्रीत कौर मानक, इस सुभाग जोड़ी दे आनंद कार्ज विच आप जी शामिल होण वास्ते आयो। सो गुरु साहिब जी की कृपा दे नाल आपां कुछ ही समय दे अंदर आनंद कार्ज दी मर्यादा नूं प्रारंभ करना है। सतगुरु पासों आग्या लै करके सब तो पहला गुरु साहिब जी दे चरणां विच अरदास कीती जाएगी। अरदास विच सुभाग जोड़ी अते उन्हां दे माता पिता खड़े होणगे, बाकी संगत ने इसे तरह बैठे रहना है। अरदास तों बाद सतगुरां जी दे पासों आग्या लई जाएगी, हुक्मनामा साहिब होएगा, फिर पल्ले दी रस्म कीती जाएगी, उस तों उपरंत फिर आनंद कार्ज प्रारंभ होएगा, चार लावां दा पाठ होएगा। सुभाग जोड़ी ने बड़े प्यार दे नाल लावां दा पाठ सरवण करना है। संगत नूं भी बेनती है कि आप जी ने बड़े प्यार दे नाल बैठ के गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी दीआं खुशियां प्राप्त करनियां हन। हुण मैं बेनती करांगा सुभाग जोड़ी अते उन्हां दे माता पिता जी खड़े हो जाण, आपां अरदास करके सतगुरु जी पासों आनंद कार्ज प्रारंभ करन दी आग्या लईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: बोले
1: उनमें बेनती कर रहा हूं भाई निरंजन सिंह जी ते उनका जत्था जी सारे स्टेज पे आ जाओ। ते जो शुक्रवार तो शुरू होके 31 राग दरबार निर्धारित रागों से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश दिवस में समर्पित हर साल की तरह हो रहा है। ये अज दो रागों में कीर्तन करेंगे, राग बिलावल राग ज्योति। भाई साहब का समा है 12:40 बजे तक, आओ प्यार।